धन गुरु नानक पातशाह जगत जलंदे नूं ठारन जो आए सी। वेख्या संसार ते बड़े जुलम पै रहे हन, जे सकता सकते को मारे ता मन रोश न होई, ता कोई रोश नहीं, पर गरीब जनता नूं लताड़िया जा रहा सी। लहू दियां नदियां बहाइयां जा रही सन। सैदपुर दे पठान जो हिंदुस्तान ते काबज सन, जनता नूं लताड़ रहे सी। बड़ी दुखी सी जनता, बड़े हंकारी हो गए सन।

साइड भाई गुरबचन सिंह जी, भाई गुरचरण सिंह जी, ही विल बी प्लेइंग रबाब एंड सरंदा. रबाब एंड सरंदा इज ए गिफ्ट टू आवर कीर्तनीय भाई धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह. एंड टुडे इट इज अ सरप्राइज दैट ही इज द ओनली वन हु कैन प्ले दिस सरंदा एंड रबाब. एंड भाई कुलजीत सिंह जी भी, ही विल बी रिसाइडिंग कीर्तन एज ए क्लासिकल शब्द. भाई कुलजीत सिंह जी एंड जथा एंड भाई गुरचरण सिंह जी ऑन सरंदा. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह.

तुर्क दुष्ट सब शह किए हर नाम उचारा तिन आगे कोई ना ठहरे हो तिन आगे कोई

गुरुद्वारा बड़ू साहिब जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश दियां बीबियां दे ढाडी जथे दी इन्नी सेवा प्रवान करो। बुलाओ फतेह ते

कि सिमरन दे विच बरकत है, सिमरन दे विच इतनी ताकत है जिस नीच को कोई ना जाने, जिन्हों कोई भी नहीं सी जान। ते नाम ने की कीता, नाम जपने करके चौंकुंटा दे विच माने हैं। कैसा नाम है? नाम जपत आओ चौंकुट माने,

देव पिया मानो के नाम जपण वालियां दे देव, नाम जपण वालियां दे वड्डे जिन्हां नूं सारियां ने सत्कारिया, ऐसे भगत नामदेव ने बचपन दे विच नारायण नूं प्रगट करके दुध पिलाया ते शब्द उचारण होया दूध पियो गोविंदे राये, दूध पियो मेरो मन पतिया, नहीं ता कर को बाप रिसाए। ते कहंदे ने आखर भगती परवान होई नामदेव जी दी, ते दूध पियाए भगत कर गया, नामे हर का दर्शन भया। नामदेव नू हरी दे

मगर उस दे विच पानी कोई दिखाई नहीं देंदा। खूह ते है मगर पानी कोई नहीं। ते ज्ञानेश्वर जी महाराज ने सोचिया देखिया बई ए मेरे नाल जो चले

ते क्या ज्ञानेश्वर जी महाराज ने भगत जी तुसी भी पानी पियो ते नामदेव जी ने इनकार कर दिता। कहन लगे महाराज मैं केवल अपनी प्यास नहीं बुझाना चाहुंदा, मैं चाहुंदा हां कि आन वाले समय दे विच जो राही इस राह तो गुजरन ए कुआं उना दी भी प्यास बुझावे। एदे विच जल जो है ओ नको नक परा। ज्ञानेश्वर जी ने समझाया बच्चे तू अपनी प्यास बुझा ता जो असी अगे भी राहे पैना है और द्वारका नगरी पहुंचना है। मगर नामदेव इनकारी हो के

रामदेव हुण तूं अपनी प्यास बुझा लै, तेरी नारायण ने सुन लई। आइंदा समें विच जेड़े भी इस राह तों गुजरनगे, ओ अपनी प्यास तेरी अरदास दी शक्ति द्वारा बुझाया करनगे। नामदेव ने शुकराना कीता नारायण दा, पानी पीता प्यास बुझा करके,

वीर कौडी कौडी जोड़ के जोड़े लाख करोड़ चलती बार न कछ मिलियो ले लंगोटी तो सुतड़े असंख माया झूठी कारणे नानक से जागन जे रसना नाम उचारने असंखा हजूर कहंदे ने असंखा ही मोह माया दी नींदर विच सुते होए हन अपने तंदियां विच सारा जीवन रोल दिता है पर कदी सुते होए मन नू जगाउण दा जतन नहीं कीता कि तू की करन आया है वाहिगुरु ने तैनू किस मार्ग ते तुरन लई कहा सी ते तू किस मार्ग ते तुर पिया है प्रिया प्रेम सहज मन अनद धरोरी प्रभ मिलबे की लालसा तांते आलस कहां करोरी जिन्हां नू प्रभु दे मिलन दी लालसा होवे ओ फिर कदे आलस करदे हन ओ अमृत वेला सौंके बिता देंदे हन नहीं ओ कदे नहीं अमृत वेला सौंके बिताउंदे ओ फिर जाग के मालक दे चरणा विच जुड़ के आनंद माणदे हन रस माणदे हन ते जिन्हां ने भाई ए मनुच्छा जन्म मोह माया दी नींदर विच सौंके ही बिता दिता है पहला बचपन सी खेडां विच बीत गया जवानी घर दे सामान इकट्ठे करन विच बीत गई ते बुढ़ेपे विच भी तां ओही कुछ चेते रह जाएगा ना जो जवानी विच हिरदे रूपी पट्टी ते लिख लिया सेठ बनारसी दास जो सहारनपुर दे रहन वाला सी बड़ा धन एकत्र कीता बड़ी माया कठी कीती शौकारे दा कम करदा सी महल माड़ियां दुकाना माया दी कोई कमी नहीं पर अपने जीवन विच कदे एक दंबड़ी भी भले पासे नहीं लाई एक कौड़ी भी कदे चंगे पासे नहीं दिती की पिया कितनी मुश्किल कमाई दी है ते ए हुन मंगत्यां नू लोड़वंदां नू देण वास्ते कमाई है की मिल जाएगा इन्हां नू दे के सारा जीवन बिना सिमरन दे बिना सेवा दे बतीत कर दिता अंत समा आ गया हुन अंत वेले परमेश्वर कित्थे याद रहिंदा बच्चे सिराने बैठे हन पर मन अजे भी कार विहार विच डुबिया होया फलाना किथे है ओ किथे है अखे जी सारे बैठे हन ते दुकान ते कौन बैठा है उचारण करो श्री वाहिगुरु मर्दी वेरी भी तंदियां विच रुझिया इसे तरह शरीर छड़ गया हुन पुत्रां ने सोचिया भाई पिता जी ने अपने जीवन विच तां कोई चंगा कर्म नहीं कीता ते कितना चंगा होवे जे इस दा शरीर हर द्वार ले जाके गंगा दे किनारे संस्कार कर दईए इस दी गति हो जावे क्योंकि जिन्हां ने नाम नहीं जपया त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया त्रिग कुटुंब शरीर सहत जित हुण खसम ना पाया पौड़ी छुटकी हाथ ना आवे ऐला जन्म गवाया उदा खाना पीना पहनना सिर्फ उसदा ही नहीं उदे कुटुंब नूं भी लानता पैंदियां हन त्रिग कुटुंब शरीर सहत ए सेठ बनारसी दास दी हालत पुत्रां ने कहा चलो
ਇਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਚਲੀਏ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਗਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। 15-20 ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਆ ਗਈ। ਰਾਤ ਉਹ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਈ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਚਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸ਼ਸ਼ਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਇਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਤ ਕੱਟੀ।

पंच को झगड़ा, झगड़त जन्म गवाया, संसार वल निगाह मार के वेखिए, बस इना पंजा झगड़िया विच ही मनुख सवेर तो शाम तक और रात तो सवेर तक इना ही झगड़िया विच पिया होया। इसनू परमेश्वर दा सिमरन भोली गया है। इसे लई गुरु तेग बहादुर साहब कहिंदे हन, अब मैं कौन उपाओ करूं, जे बिद मन को संसा चूके पवनिद पार परो, जन्म पाए किश पलो न कीनो ताते अधिक डरो। इसलिए कबीर जी कहिंदे हन, भाई सुख तां उना ही पाया है जिन्हां ने जपिया श्री वाहिगुरु। तो इसलिए झूठी माया सब जग बांधिया, झूठी माया ने तां सारे जग नू बनिया, पर रब दे प्यारे अमृत वेले जाग के नाम जपदे हन, सेवा सिमरन करदे हन, अपना जीवन सफल करदे हन। सेजे रमत नैन नहीं पेखो, ए दुख कांस्यो कहोरे, मेरी मत बौरी मैं राम बिसारियो, किन बिद रहन रहोरे, बाप साब का करे लड़ाई, माया सद मतवारी, बड़े भाई के जब संग होती तब हूँ ना है प्यारी, कहत कबीर पंच को झगड़ा, झगड़त जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधिया। कबीर जी कहंदन, मैं राम रमत

हे मेरे मालिक, सब तेरे कोलों मंग रहे हैं। ते मंगिया उथों ही जांदा है जिथों दात मिलती हो, जिथों मंग पूरी हो जाए। इसलिए सब तेरे कोलों मंग रहे हैं। पर गल कमाल दी है, मंगल वाले बहुतात विच हन जिन्हां दी कोई गिनती नहीं, पर देन वाला इको ही। ते हर मंगते दी मंग वखरी है, ए नहीं कोई कोई मंगदा होवे। जिन्ने मंगण वाले ओनिया ही उन्हां दियां मंगां। पर हे परमात्मा, तू देन वाला एक है, कुर्बान हां तेथों जो तू सब दियां मंगां कबूल कर रहे है। हुण गल मंगण दी चली है, ते साहब कहिंदे ने आ हुण विचार इस गल दी भी कर ली है, परमात्मा देण तों इनकार ते नहीं करदा, पर असीं मंगणा किवें है ते मंगणा की है।

भंगी है। केसो केसो कुकिए ना सोइए आसार रात दिवस के कुकने कबू को सुने पुकार, कड़ी ते पुकार सुनेगा ना, बस मंगता मंगी जाए, मंग बार बार दोहराई जाए, किवे मंगे बबीहे दी तरह। उस चातक दी नहीं आई जिड़ा बार बार प्यू प्यू करदा रहिंदा, मंगी जांदा ना दिन विंदा ना रात विंदा, वो पुकारा करी जांदा। बबीहा बोल रहा सी, किसी ने आवाज मारी ते आखिया बबीहा क्यों प्या बोलना, कहना एक बूंद चाहिए, एक बूंद ली बोल रही, मंगती का पहला गुण है जी। कहने संसार विच कितना बड़ा समुद्र है, नदियां नाले ने, सागर हन, तालाब हन, वो कितों भी एक घुट पानी का पी के अपनी प्यास बुझा ले। कहने नहीं, ए पानी मेरी प्यास नहीं बुझा सकते, मैनू तो एक बूंद चाहिए, एक बूंद वास्ते मैं इतना प्यू प्यू कर रही हूं। ख्याल करियो जी, एक बूंद जल कारण चातक दुख पावे, एक बूंद वास्ते वो किन्ना बोल ले। कहना जा जाके सौ, आप भी सौ ते मैनू भी सौन दे, क्यों नींद हराम कर रहे, बबीहा नहीं मुड़िया जी, बबीहा बोलता जा रहे। आखिर की होया, वो एक लिव नाल बोल रहा सी, एक कोलो मंग रहा सी। बाणी विच फैसला है जी,

ताहर ने फल सब खाल गवास मेरे मन हर ऊपर की जे भरवासा जे जाइए ते नाल मेरा स्वामी हर अपनी पैज रखे जनदासा जे अपनी बिरथा कहो अवरा पे ता आगे अपनी बिरथा बहुत कढ़ासा अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पे जो तुम्हारे दुख तक काल कटासा सो ऐसा कब छोड़ अपनी बिरथा अवरा पे कहिए

पर उसका भाव और जो अनुभव नाम जपन वालिया का होंदा है वो किसे होर दा नहीं होंदा। कहन लगे चरणा की प्राप्ति हो गई ते फिर की मंगोगे, ता फिर आप ही प्यार विच आके रब दे रंग विच रते होए। कहन लगे गुरमुखो जदों चरणा दा प्यार मिल रहा होवे, चरणा दी प्राप्ति हो जावे, ता चरणा विचों चरणा दी प्रीति मंग लेना। क्योंकि कोई वस्तु मिल जावे ते फिर उदे नाल प्यार ना बने, कोई वस्तु सानू प्राप्त हो जावे, निरंकार दे दर्शन हो जान ते प्यार ही नहीं बनया, स्नेह ही नहीं होया, ता फिर ओ रस ओ स्वाद उस बख्शिश तो खाली रह जाई। ते महापुरख कहन लगे चरणा विचों चरणा दी प्रीति मंग ले हो। इसलिए जिन्हां नूं स्वाद आ गया है, चरणा दा रस आ गया है, प्यारी साध संगत इस रस नूं ओही जान दे। इसलिए इच्छा नहीं चरणा दे प्यार वालियां नूं, राज ना चाहूं मुक्त ना चाहूं मन प्रीत चरण कमलारे। जो चरणा दी प्रीति विच आनंद है, क्योंकि कबीर जी कहते हैं मैनू स्वर्ग नहीं चाहिदा, स्वर्ग तां पुन्ना करके मिलता है, जदों पुन समाप्त हो जान तां जीव फिर उथे ही पहुंच जांदा है जिथों तुरिया सी। पुन खत्म हो गए ते फिर गिराए मन कीता जांदा है। कबीर जी कहते हैं मैं नरकां विच भी नहीं जावांगा, क्योंकि जिन्हां नूं पूर्ण गुरु की प्राप्ति हो गई है, पूर्ण गुरु कदे अपने सेवक नूं नरकां विच नहीं जान देंदा। वो बचाउंदा है भावें अपनी कमाई देनी पवे, अपने सेवक नूं कदे नरकां विच नहीं जान देवेगा। ते कबीर जी कहते हैं कबीर स्वर्ग नरक ते मैं रहो, संतन के पर सतगुर के प्रसाद, चरण कमल की मौज को रहो अंत अर आद। चरण कमल की मौज में रहो अंत अर आद, कबीर चरण कमल की मौज को कहो कैसे अनुमान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कहते हैं इस मौज नही जानते हैं जेडे गुरु के चरणा में जुड़ते हैं भाई। इसलिए इच्छा नहीं स्वर्ग दी, ना इच्छा राज भाग दी, इन्हों जिन्हों शब्द रूपी चरणा दा

इतना रोगी नहीं होता जिन्ना कि बहुता खाण वाला रोगी होता है। भुखे घट मरते ने, बहुते खाण वाले ज्यादा मरते। रसना सतगुरु जी उपदेश कर रहे ने, ए रसना तू अन रस राज रही। अन रस कहते ने होर रस, होर रसा विच ते पै गई, ऐ भी खा लवा ओ भी खा लवा। किसी की निंदा चुगली की, किसी नु माड़ा कहा, किसी नु गालां कढ़िया, माड़ी गल करके किसी का घर बर्बाद कर दिता, ये काम तो तू किया। पर ऐ रसना तू प्रभु का सिमरन नहीं किया। खाण दे भी रस हैं, झूठ बोलना भी का रस है, निंदा चुगली करनी भी का रस है। ये सारे

अपने पल्ले नहीं पांदी पाव। है जुबान जदू तो नाम जपन लग पवेगी, मन करके फिर कदी अपनी जुबान तो किसे नु माड़ा नहीं।

जे मां चंगी सिख्या देवे ते बच्चा नेक और चंगा बनेगा, पर जे मां ही अपनी जबान तो माड़ी सिख्या देवेगी ते फिर बच्चे दा जीवन ते बिगड़ेगा। कई बारी मामा ही बच्चियां दा जीवन बगाड़दियां हन, झूठ बोलन दी आदत पा के, चोरी करन दी, चीज लुकाउन दी आदत पा के। हुण मां ने कहा कोई पाप नहीं कोई पुन नहीं, ते पुत्र ने मान लिया। आर्या समाज दे सत रिखी इन्हां ने तौणा नीवियां कीतियां ते बाल भी कुहाड़ा सिर तों तां चुकिया लगे हन इन्हां नूं।

मरा मरा जपदिया ऐसी मालक दी मेर होई बिरते लग गई मन जुड़ गया ए रसना जेड़ी मरा मरा कहती सी कृपा हुई मालक दी मरा मरा तू हुण राम राम हो गए समा बीते ओही आरिया समाज दे सत रिखी फिर उस पासे आए राम राम दी आवाज आ रही है इधर उधर देखिया बंदा कोई नजर नहीं आंदा एक मिट्टी दा ढेर है उत्ते कास पुगे अपनी शक्ति नाल जाने

0: गला खुद कटाने को बस आप ही है।
1: दसम पिता दी ए गल सुन के गुरु तेग बहादुर साहिब पातशाह ने अपनी कुर्बानी दिती ते फिर क्या गे ए सारे हिंदुस्तान वास्ते साहबा ने अपनी कुर्बानी दिती। तिलक जंजू राखा प्रवतांका कीनो बड़ो कलू में साका ते फिर बड़ा सुंदर करके लिखिया गया है।